लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं बड़े फख्र के साथ आपके सामने इस देश का एक मशहूर कलाकार पेश कर रहा हूं जो पहली बार इस क्लब में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इज अ ग्रेट आर्टिस्ट।